0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जरा उस मछली की कल्पना कीजिए जो अथाह और अनंत समंदर के बिल्कुल बीचों बीच तैर रही हैं। उसके ऊपर भी अनंत जल है, नीचे भी अनंत जल है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा में केवल और केवल वही सागर हिलोरे ले रहा है। जब अगर कोई उस मछली से पूछे कि तुम कहाँ जा रही हो और कहाँ ठहरने का इरादा है, तो मछली क्या जवाब देगी? उसके लिए कहीं जाने की कोई अलग जगह बची ही नहीं, क्योंकि वहाँ जहाँ भी जाती हैं समंदर में ही होती हैं और किसी सीमित बिंदु पर ठहरने की कोई ज़मीन नहीं बची, क्योंकि पूरा का पूरा समंदर ही उसका घर बन चुका है। जब साधक की चेतना उस विराट परमात्मा में एकाकार हो जाती हैं, तो उसकी दशा भी ठीक उसी मछली जैसी हो जाती हैं, जहाँ सारे द्वैत, सारी दिशाएं और आने जाने के सारे रास्ते समाप्त हो जाते हैं। कबीर साहब आज हमें उसी अनिर्वचनीय और परम रहस्यमयी स्थिति का दर्शन करा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर का यह सूत्र। जाइबे को जगह नहीं, रहिबे को ठोर। जाइबे को जगह नहीं, रहिबे को नहीं ठोर। कहे कबीरा संत हो, अब अगति की गति और।

0: तेरे साथ हो अगति की गति। और श्रोताओं, कबीर साहब आत्म साक्षात्कार की उस परम अद्वैत स्थिति का उद्घाटन करते हुए कहते हैं, जाई बेको जगह नहीं। जब जीव को यह बोध हो जाता है कि वह परमात्मा कण कण में भीतर और बाहर पूरी तरह व्याप्त हैं, तो फिर उसके जाइबे को यानी कहीं अलग जाने की कोई दूसरी जगह बचती ही नहीं। जहाँ देखो वही वह साक्षात मौजूद हैं, रही हुई को नहीं ठोर। और इस नश्वर संसार की किसी सीमा, किसी देह या किसी एक निश्चित ठोर यानी भौतिक स्थान पर टिके रहने का भी कोई आधार नहीं रहता, क्योंकि वह सीमित अहंता ही मिट चुकी है। इसलिए अलौकिक स्थिति को और संतों का ध्यान खींचते हुए कबीर कहते हैं, कहे कबीरा संत हो, हे संतो, हे साधकों, इस परम सत्य को ध्यान से समझो। अभिगति की गति और उस अभिगति यानी अव्यक्त, अगोचर, निराकार परब्रह्म और उसकी अनुभव की गति यानी अवस्था दुनिया के तमाम तर्कों, शब्दों और अनुमानों से बिल्कुल और यानी सर्वथा भिन्न, विलक्षण और अनिर्वचनीय है। उसे केवल वही जान सकता है जो उसकी पूरी तरह विलीन हो चुका हो। यह दोहा मांडुक्य और छांदोग्य उपनिषद के सर्व खलवीद ब्रह्मा तथा तूर्य अवस्था का शिखर है। जब तक मनुष्य खुद को एक अलग व्यक्ति मानता है, तब तक उसके लिए यहाँ से वहाँ जाना और यहाँ रहना बना रहता है। लेकिन जैसे ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है, देश और काल की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। अभिगति का अर्थ यह जो इंद्रियों के दायरे में नहीं आता, कबीर समझा रहे हैं कि परमात्मा को किसी मंदिर, तीर्थ या किसी खास दिशा में जाकर नहीं पाया जा सकता। जब अहंता शून्य होती है, तो जीव हर दिशा में उसी अभिगति के असीम विस्तार का अनुभव करने लगता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने इस आने जाने और भागदौड़ के भ्रम को गहराई से देखिए। हम पूरी जिंदगी किसी न किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए दौड़ते रहते हैं, कभी धन के पीछे, कभी पद के पीछे, तो कभी मोक्ष की कल्पना के पीछे। हम सोचते हैं कि शांति कहीं दूर, कहीं दूसरी जगह पर मिलेगी। आज कबीर इस सूत्र से समझा रहे हैं कि वह परम तत्व कहीं दूर नहीं, बल्कि इसी क्षण आपके भीतर और बाहर हर जगह मौजूद है। व्यर्थ की मानसिक दौड़ धूप को विराम दीजिए। उस राम नाम के असीम विस्तार में अपनी मैं को विलीन कर दीजिए। जब आप इस अविनाशी सत्ता में समा जाएंगे, तो आपकी सारी यात्राएं पूरी हो जाएंगी और आप उस परम स्थिति को पा लेंगे जिसकी महिमा शब्दों से परे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केला आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट
2: टच। 69 वा तथागत माणूस, माणूस हा मानवी संस्कारांनी परिपूर्ण असला पाहिजे। त्यासाठी प्रज्ञावान माणसाला शील संवर्धनातून तू दाखविलास आर्य अष्टांगिक मार्ग। या मार्गाने चालल्यावर माणूस फक्त मानवी अवयवाने माणूस ठरत नाही, तर तो त्याच्या संपूर्ण विवेकी आचरणासह माणूस ठरत जातो नीतिमान आचरणाचा। हे नीतिमान आचरण असते अति महत्वाचे। चतुष्पाद प्राण्यापासून आचरणाने विभक्त करण्यासाठी माणसाची ओळख असावी म्हणून दुसऱ्याचे दुःख जाणणारा, चांगल्या गोष्टीसाठी कार्यासाठी सुखोपभोगांचा त्याग करणारा नीतिमान माणूस संस्कृतीचे संवर्धन करतो, तो कोणत्याही भेदाभेदात अडकत नाही। त्याच्यासाठी विश्वकल्याणाच्या दिशा हीच मानवी संस्कृतीची आशा, तो मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्गामध्ये इच्छाशक्तीला महत्व आहे। आर्य अष्टांगिक मार्गातील पहिला मार्ग म्हणजे सम्यक दृष्टी होय। सम्यक दृष्टी म्हणजे अविद्येचा विनाश, सम्यक दृष्टी म्हणजे मिथ्या दृष्टीची विरुद्ध बाजू होय। अविद्येचा विनाश सम्यक दृष्टी करते म्हणजे नेमके काय, म्हणजेच अविद्या कशाला म्हणावी? मनुष्याला दुःखाचे अस्तित्व तसेच दुःख निरोधाचा उपाय ही उदात्त सत्य न समजणे म्हणजेच अविद्या होय। हेतूच आहे सम्यक दृष्टीचा असा की समजले पाहिजे माणसाने कर्मकांडाच्या विधींना व्यर्थ आणि सोडून द्यावा त्याने मिथ्या विश्वास, शास्त्रांच्या पावित्र्यावरील अद्भुत कल्पनांचा त्याग करावा त्याने सम्यक दृष्टी पुष्ट होण्याकरिता। होऊ शकते कोणतीही गोष्ट निसर्ग नियमाविरुद्ध हे मानता कामा नये सम्यक दृष्टीच्या माणसाने, असेल ज्या सिद्धांतांना वास्तवतेचा किंवा अनुभवाचा आधार, ते असतात योग्य परंतु काल्पनिक अनुमाने आहेत त्याज्य सम्यक दृष्टीसाठी। ज्याला करता येत नाही अविद्येचा विनाश, त्याच्यामध्ये नाही स्थिर होऊ शकत सम्यक दृष्टी। सम्यक दृष्टीशिवाय माणूस म्हणजे अंधार कोठडीतील कैदी संभावा। सम्यक दृष्टीशिवाय माणूस म्हणजे आकलन शक्तीचा अभाव होय। तेव्हा सम्यक दृष्टी विकसित करण्यासाठी इच्छाशक्ती असावी आणि द्यावी गती त्याने इच्छाशक्तीला, म्हणजे गळू लागतील बंधने आणि होऊ लागेल तो बंधमुक्त, पडू लागतील त्याची पावले स्वातंत्र्याकडे सम्यक दृष्टीकडील प्रवासाने। म्हणून मन नसावे बंधनात, मन वळावे योग्य दिशेला, तर होऊ लागतो माणूस बंधमुक्त आणि कळू लागतो त्याला सम्यक दृष्टीचा अंतिम उद्देश। अन्यथा अंधार कोठडीत पडलेला कैदी हा आंधळ्या माणसासारखा असतो सम्यक दृष्टी नसल्यामुळे। सम्यक दृष्टीला आकळते दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य आणि दुःख निरोधाचा मार्ग। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाती, जरा अशी चिकित्सा उभारते सम्यक दृष्टीमध्ये आणि ज्ञान जाणीवांच्या पायऱ्या सक्षम

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबके साथ हैं। बात कर रहे हैं हम लाइफ स्किल्स की। कितनी स्किल्स हमने सीख ली इस पूरे जीवन में, नहीं सीख पाए थे तो लाइफ को कैसे जीना है, इस स्किल को हम इस श्रृंखला में जान रहे हैं। बहुत कुछ हमने जाना अपने विचारों के बारे में, और अगर पिछली कड़ी देखें तो एक बहुत बड़ा रिवलेशन था कि मैं जो भी थॉट क्रिएट कर रही हूँ, जो भी फीलिंग्स क्रिएट कर रही हूँ, वो मेरे बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, और कई बीमारियाँ जिन्हें मैंने लाइफस्टाइल मान लिया था, वो बहुत कुछ मेरे इन थॉट्स इन फीलिंग्स के कारण क्रिएट हो रही थी। आज बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या इस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है। बीमारियाँ हैं तो क्या थॉट और फीलिंग क्रिएट करके उन बीमारियों से मैं मुक्त हो सकती हूँ। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, दोनों का स्वागत। डॉक्टर पटेल, एक छोटा सा रिकैप आपके साथ करना चाहेंगे, क्योंकि इट्स समथिंग न्यू, यू नो, ये तो अभी तक सुना था कि हाँ अगर गुस्सा करते हैं वो बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है, लेकिन वी नेवर थॉट, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि उसको ठीक किया जा सकता है, कि कौन सी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के जो हमारी जो स्ट्रॉन्ग और टॉक्सिक इमोशंस हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है।
1: जब तक हमने देखा है कि मेनली तीन सिस्टम्स, एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक है, जिसका संतुलन होना चाहिए, परंतु इन टॉक्सिक इमोशन से वह संतुलन हो जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत ज़्यादा काम करने लगती है और बहुत सारी बीमारियां होती है। दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इम्बैलेंस आता है और वह थोड़ा सा भी इम्बैलेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और तीसरी बात कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के द्वारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे रेजिस्टेंस पावर पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, और उससे भी न केवल अनेक बीमारियां होती है परंतु कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है बॉडी को ही दुश्मन मान लेती है और उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो तीन मुख्य बातें हैं
0: जी, उसके अलावा भी बॉडी के किसी सिस्टम पे ये इमोशंस वर्क करते हैं।
1: और एक जो इससे भी गुह्य, शायद इससे भी सूक्ष्म है, यहाँ भी डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, परंतु हम उसके बारे में सजग हो जाए इसलिए बता रहा हूँ, कि ब्रेन में 900 से ज्यादा केमिकल्स है, और वह केमिकल्स बड़ी सूक्ष्म मात्रा में, उनका भी सही मात्रा में वह केमिकल्स होने चाहिए, अगर कम हुए तो भी समस्या होगी, बढ़ गए तो भी प्रॉब्लम होगा, और इस टॉक्सिक इमोशन से उन केमिकल्स पर बुरा असर होता है। कभी आपको कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो और आप डॉक्टर के पास जाओ और पूछो कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, तो उसका स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि भी केमिकल इम्बैलेंस है,
0: मतलब हम भी इतनी बार सुन चुके हैं कि हाँ कुछ केमिकल इम्बैलेंस हुआ है।
1: तो ये एक एक इमोशंस भी वो केमिकल में इम्बैलेंस क्रिएट करता है,
0: जैसे कि ये उसको थैलेमस, उसको ब्रेन को टच करती है क्या?
1: हाँ, पहले तो हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट करेगी, और फिर जो सारे ब्रेन के केमिकल्स है उन सब में भले इनिशियली माइनर डिस्टर्बेंस होगा, परंतु अगर कंटिन्यू हो तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, साथ साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स होने की संभावना भी बहुत बढ़ सकती है।
0: क्या पर्टिकुलर इमोशंस पर्टिकुलर ऑर्गन्स पर इफेक्ट डालते हैं, जैसे हेट्रेड है या यू नो लाइक बहुत ग्रीड है, एंगर है, वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स पर काम करते हैं?
1: हाँ बिल्कुल, कुछ तो रिसर्च हुई है, मैं तो समझता हूँ और भी इसके बारे में अगर कोई सिस्टमेटिक रिसर्च हो तो बहुत बड़ी बात लोगों के सामने वो रिवील हो सकती है, परंतु अब तक जो रिसर्च हुई उसमें पता चला है कि जिनकी टाइप ए पर्सनालिटी होती है, कि जो लोग परफेक्शनिस्ट है, सब कुछ उनको टाइम पर चाहिए, एक चीज यहाँ से यहाँ ना होने तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे जो टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं उनमें माइग्रेन बहुत ज्यादा होता है, उनको ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
0: पर क्यों होता है ऐसे?
1: अभी यहाँ भी ये मैकेनिज्म तो सेम है कि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगी तो ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, माइग्रेन हेडेक हो सकता है, ब्लड वेसल्स पर इफेक्ट हुई उससे भी माइग्रेन होगा, परंतु स्पेसिफिक इमोशंस की जहाँ तक बात है, यह भी प्रूव हुआ है कि जो लोग हाइपर क्रिटिकल है, कि छोटी छोटी बातों में क्रिटिसाइज करेंगे, नेगेटिविटी कोई दूसरे में देखेंगे, उनको कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं देता है, इस प्रकार की जिनके मेंटेलिटी है उनको भी हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है।
0: हर एक में बुरा ही देखते हैं जो हम।
1: और ये भी देखा गया है कि जो सप्रेशन में जीते हैं, ये जो दबाव में जीते, जिनको लगता है कि परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उनको हाइपोथायराइड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब देखना, हाइपोथायराइड अधिकतर महिलाओं में है, क्योंकि किसके अंडर में जीना पड़ता है,
0: सफोकेटेड जब फील करते हैं,
1: जब भी ये फीलिंग हो तो हाइपोथायराइड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। डायबिटीज के लिए भी माना गया है कि जो लोग बहुत ग्रीडी है, ये चाहिए एक्युमुलेट करना चाहते हैं,
0: ना केवल फिजिकली, कई बार ये इनसिक्योर भी लोग भी तो ग्रीडी हो जाते हैं।
1: हाँ, बस इनसिक्योरिटी फिर ग्रीडीनेस में लाएगी, और ग्रीडीनेस के कारण भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ेगी।
0: अच्छा, वो
1: लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी है, परंतु ये सूक्ष्म फैक्टर्स है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह भी देखा गया है कि जो लोग असंतुष्ट है जीवन में, सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में, उनको पेट के प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। एक होता है कोलाइटिस, एक है माइल्ड एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, ये सब पेट की बीमारियां हैं, वो पेट की बीमारियां होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। इस पर अगर और अच्छे से रिसर्च किया जाए तो सचमुच गहरी बातें सामने आ सकती है कि भी कौन सी फीलिंग्स, इमोशंस वो कौन सी बीमारियां निर्माण करते हैं।
0: जैसे शिवानी, अभी तक हम फीलिंग्स को ये मानते थे कि वो नेचुरल है, मतलब उनका ऐसे सिस्टम पे, बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ना, तो आई कुड एक्चुअली नेवर इमेजिन। मैं अभी भी रिलेट नहीं कर पा रही हूँ कि अगर मैं ग्रीडी हूँ या एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ तो मेरे को डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं।
2: एक्चुअली ऑल द मोर इम्पोर्टेंट लग रहा है ये सुनने के बाद कि अपने इश्यूज को रिजोल्व करना कितना जरूरी है। यू नो, सप्रेस्ड फील कर रहे हैं, और सप्रेस्ड फील करना भी मतलब क्या कि सिचुएशन के रिस्पॉन्स में पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ थॉट्स क्रिएट करना, एंड वी कैन लिव विद दैट थॉट पैटर्न फॉर अ लाइफ टाइम। अब ये जो बीमारी है, दिस माइट यू नो डिवेलप 25 के बाद, 35 के बाद, 45 के बाद, लेकिन उसकी शुरुआत तो फिर कितने साल पहले शुरू हो गई थी। तो आज अगर हम अपने थॉट पैटर्न का बच्चों के लेवल से ही ध्यान रखना शुरू करें, इट्स नॉट गोइंग टू बी कि हाँ हम तो अपना तो ध्यान रखें।
0: yes, बच्चों को अगर हम देखें तो कितना सप्रेस्ड फील करते हैं,
2: क्योंकि उनके अभी एक एक ऑर्गन डेवलप हो रहा है, एंड उनकी वो जो फिजिकल डेवलपमेंट वो हो रही है, एंड अब अगर वो इतनी यंग एज से ये सारे इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इफ वी गो बैक टू स्टूडेंट लाइफ, तो हमारे पास स्ट्रेस कोई वर्ड नहीं था वोकैबुलरी में, ये सब जो अब फील हो रहा है। तो अगर हमारी जो जेनरेशन थी जिनकी इमोशनल लाइफ फिर भी काफ़ी बैलेंस्ड थी, लेकिन फिर भी आज हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इट इज़ स्केरी टू थिंक कि अब के जो बच्चे हैं जिनकी इमोशनल लाइफ ही अभी से इतनी अनबैलेंस्ड है, आफ्टर 30-35 इनकी फिजिकल हेल्थ कैसे होने वाली है? इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ, क्योंकि इनकी इमोशनल भी वीक है, और इमोशनल के कारण फिजिकली अभी से वीक हो रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट।
0: ऑर्गन्स ही वीक डेवलप होंगे, इसका मतलब
1: यही बात है। कई लोग इसमें ये भी प्रश्न पूछते हैं कि भी ये टाइप ए पर्सनालिटी तो बहुतों की है, तो सबको क्यों ना हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि जिनका हार्ट ऑलरेडी वीक है और कोई कारण से भी, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसके कारण हार्ट पर ऑलरेडी इफेक्ट हुई है, तो उनमें इमीडिएटली टाइप ए पर्सनालिटी की इफेक्ट होगी और हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे भी किसी में ऑलरेडी उनका थायराइड वीक है, जेनेटिकली उनमें ऐसे जीन्स है कि जिससे थायराइड 100% कार्य नहीं कर रहा है, परंतु और बातें आ गई साथ में, सप्रेशन फील कर रहे, तो थायराइड की समस्या होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसे जो ऑर्गन्स जेनेटिकली वीक है और कोई एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण वीक है, उन पर इमीडिएट इफेक्ट होगी।
0: और लेकिन अदरवाइज आप कह रहे हैं कि अगर जेनेटिकली स्ट्रांग है तो ग्रेजुअल तो उन पर असर होगा,
1: भले टाइम लगेगा परंतु इफेक्ट तो हो ही रही है।
2: लेकिन आजकल जो बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज यंग एज पे हो रहा है, डिप्रेशन भी हो रहा है, आपने जैसे कहा केमिकल इम्बैलेंस है, लेकिन वो केमिकल इम्बैलेंस इमोशंस के कारण है। डिप्रेशन स्टूडेंट लाइफ में होना, दैट मीन्स वो इमोशनल इम्बैलेंस तो शुरू हो चुका है ना, एंड दिस इज सो मच बिकॉज ऑफ हम भी अपनी जो इमोशनल एनर्जी उन पर डाल रहे हैं सारा दिन, एंड फिर जो आपने कहा ये हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। हम तो अपने बच्चे को टूडे नाउ आई फील के सिर्फ इमोशनली वीक नहीं कर रहे, फिजिकली भी वीक कर रहे हैं, एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क टू ईच वन ऑफ अस।
0: ओबेसिटी भी किसी इमोशन के कारण?
1: हाँ, एक तो बहुत मुख्य बात तो ये है कि जो हम खाते हैं वो यही नहीं है कि भी आपको भूख लगी, बॉडी को जरूरत है इसलिए खा रहे हैं। एक है साइकोलॉजिकल हंगर ऑल्सो, इसको नहीं आम भाषा में हम कहते झूठी भूख। व्यक्ति भी समझता है कि मैं अभी खाया है, पेट भर के खाया है, फिर से मुझे आधे घंटे में भूख लग रही है, वो समझता है कि झूठी भूख है, ये झूठी भूख साइकोलॉजिकल है क्योंकि अंदर में डिससेटिस्फेक्शन है और व्यक्ति खाने से सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने की कोशिश करता है और फिर ओबेसिटी भी हो सकती है और बच्चों में भी यही कारण है बहुत बड़ा।
2: अब हम जब बच्चों के कारण के बारे में अगर आपस में सोचते हैं या बात करते हैं ओबेसिटी की, वी ओनली से बहुत टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं, बाहर आउटडोर नहीं जा रहे एंड जंक फूड खा रहे हैं, हुएवर थॉट कि उनका थॉट पैटर्न ये ओबेसिटी क्रिएट कर रहा है,
0: आई थिंक पेरेंट्स को रियलाइज ही नहीं हो पाते।
2: अब हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, बच्चे को जंक फूड से दूर करेंगे, टीवी से दूर करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम पर नहीं हिट करेंगे जो इंटरनल है, तो आउटवर्ड भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती ही नहीं,
0: डिससैटिस्फेक्शन की तरफ जाया जाए,
2: क्यों मेरा बच्चा डिससैटिस्फाइड है, क्या उसको अंदर खालीपन लग रहा है, बाहर हमारे घर में सब कुछ है फिर भी क्या चीज की कमी वो महसूस कर रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन टुडे आर मिसिंग देयर पेरेंट्स, यू नो, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है वो खालीपन, वो एम्प्टीनेस, क्यों ये बीमारियां आज ही हो रही हैं, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी इन चिल्ड्रन टुडे, व्हाई नॉट 20 इयर्स बैक, फिर हम हमेशा ब्लेम आउट पर डाल रहे हैं कि आज की लाइफस्टाइल ऐसी, इट मे बी वन फैक्टर लेकिन दूसरे फैक्टर को भी तो हमें देखना पड़ेगा,
0: यू नो, पेरेंट्स को मिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई बार पेरेंट्स जितनी देर है उतनी देर भी उनके साथ,
2: हाँ, इट्स नॉट अबाउट द टाइम, देखो पेरेंट्स ने जॉब पे तो जाना ही है, चाहे दोनों ने जाना है, लेकिन जितनी देर है तो भी उनकी मेंटल स्टेट क्या है और फिर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सी एनर्जी बच्चों को देनी है, वो तो नहीं उल्टा और ही उसके विपरीत दे रहे हैं, क्योंकि खुद ही इतने स्ट्रेस होकर आए हैं, इफ आई हैव नॉट टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ द होल डे, आई कांट टेक केयर ऑफ समवन एल्स आफ्टर दैट, नॉट पॉसिबल,
0: इमोशनली नहीं कर पाते हैं, कैसे मुड़े जो गलतियां हो चुकी, जो बीमारियां लग गई, क्या ये रिवर्स किया जा सकता है प्रोसेस?
1: बिल्कुल कर सकते हो, कि सबसे पहली बात है कि भी स्वीकार करो, मैं समझता हूँ दिक्कत यहीं पर है कि कई लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं करते, सचमुच नहीं, बाहर सबको पता चल रहा है कि भी इनमें बहुत गुस्सा है, ये टाइप ए पर्सन है, परंतु व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं मैं तो अच्छा ही हूँ, तो पहला तो स्टेप यही है कि आप स्वीकार करो कि भी मेरे में से नेगेटिव इमोशंस है,
0: मैं आपको ये बता रही हूं, इसीलिए स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि आज तक हम सोचते थे कि मेरे को गुस्सा मेरे कारण से नहीं आ रहा है, लोग ही ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे बिहेव करते हैं तो गुस्सा तो आएगा ही,
2: आज दिन तक हम गुस्से को इसलिए शस्त्र की तरह यूज करते आ रहे थे कि उनको ठीक करना है, वो बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, तो फॉर देयर डिसिप्लिन वी वर यूजिंग एंगर विदाउट रियलाइजिंग कि अपना कितना नुकसान उस प्रोसेस में हो रहा है कि हम दूसरों को ठीक कर दें, द डैमेज डन टू मी वी नेवर थॉट अबाउट, अगर आज भी वो रोशनी आ गई है, मे बी वी कैन क्रिएट मैजिक विद आवरसेल्व्स नाउ,
0: आई नो, सो ये रोशन, चलिए हम स्वीकार कर रहे हैं आगे,
1: अभी सेकंड स्टेप ये है कि भी ये समझना चाहिए कि थोड़ा डीप है, सिर्फ सुपरफिशियली नहीं देखो, हम सुपरफिशियली देखते हैं कि मैं सवेरे उठा तो फ्रेश था, काम पे गया अच्छे से गया, मैंने ठीक से काम किया, घर पे आया तो बच्चों के लिए थोड़ा टाइम भी मैंने दिया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु आप डीप में नहीं गए, अगर आप डीप में गए तो पता चलता कि भी सवेरे उठा तब इरिटेशन था कि ये चीज़ जगह पर नहीं थी, ये मुझे मिला नहीं, ट्रैवल कर रहा था तो ट्रैफिक जाम में डिस्टर्ब हुआ था, हाँ बॉस ने कुछ बोल दिया तो तब भी मेरे में फीलिंग आई थी, वो सेकंड लेवल होना चाहिए कि डीपर जो सूक्ष्म में भी संकल्प चल रहे हैं उसके बारे में भी सजग हो जाओ,
0: मुझे उसको भी कैच करो, बातें चलती जाती हैं कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन,
2: हमने कई बार बात की ना सुबह बच्चों को हम उठाते कैसे, सी द डे स्टार्ट्स ओनली विद एंगर एंड इरिटेशन, सिर्फ मेरे लिए नहीं बच्चे के लिए भी, और ये हर रोज का पैटर्न है, ये भी नहीं कि कभी कभी ऐसा हो रहा है, इट्स अ डेली पैटर्न, तो अगर हमें ये अवेयरनेस आ जाए, हम छोटी छोटी बातों पर भी अगर शुरू कर लें, बड़ी बातों पर तो अपने आप हो जाएगा, फिर इट विल बी इजियर इफ वी स्टार्ट ऑन दीस स्मॉलर थिंग्स,
1: वो एक सेकंड स्टेप होना चाहिए कि भी डीप उसको अंडरस्टैंड करें,
0: अवेयर हो जाएं कम से कम,
1: हाँ या अवेयर हो
0: कॉन्स्टेंट,
1: और फिर उसको एनालिसिस करो, फाइंड आउट करो, उस चीज को चेंज कर दो, तो जब शुरुआत हो रही है ना तभी कंट्रोल कर सके,
2: इसीलिए अवेयरनेस इम्पोर्टेंट होगी कि सारा दिन चेक करना क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, थोड़ा सा भी राइट क्वालिटी का नहीं है, लेट मी रिमाइंड माई सेल्फ कि मैं अपना डैमेज कर रहा हूँ. दैट्स वाई कॉन्स्टेंट एक अवेयरनेस, फिर वो एक नेचुरल हो जाएगी. शुरू में थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ता है. वी हैव सीन विद एक्सपीरियंस कि आफ्टर सम टाइम आपके जब इस तरह के डिस्टर्बिंग थॉट्स चलने लगे, आपको खुद दिखाई देगा. जैसे बाहर कोई डिस्टर्बेंस हो आपको दिखाई देती है, ये आपको दिखाई देगी. जैसे ही दिखाई देगी, यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इट.
0: वी फील गुड. How you feeling? How you feeling? You know, see.
2: नहीं, but feeling तक भी नहीं पहुँचेगी वो.
0: Thought तक. हाँ.
2: Feeling में भी ना थोड़ी देर में आती है. जब एक particular series of thoughts कुछ time तक चल रही है, then I start feeling, you know, like this. But if I am able to just look at it at the level of thought, why even go to the next stage of the process plant of the feeling?
0: जिसमें फिर वापस लाने में आपको time लगेगा. Okay, हमने ये सजगदा रखी सारा दिन.
1: फिर अभी next step तो ये है कि भी इसको हम चूज करें. हमने काफी बार इसको डिस्कस किया है कि भी हम स्वयं अपने थॉट क्रिएट करते हैं, या तो दूसरी बात इससे भी बड़ी सिंपल है कि हम अपने थॉट्स को चूज करते हैं. जैसे हम खाना चूज करते हैं, कपड़े चूज करते हैं, ऐसे विचारों को भी हम चूज करते हैं.
0: तो देयर इज अ बुफे ऑफ थॉट्स, यू पिक देम अप व्हिच आर गुड फॉर योर हेल्थ.
1: True.
2: Yes, beautiful. Yeah, absolutely.
0: See, buffet में भी हम वो बड़ा healthy food choose करते हैं. So similarly, let's choose.
1: हाँ, यहाँ पर भी हम वैसा ही food choose करें कि जो आत्मा के लिए अच्छा है. है ना, जो आत्मा के लिए nourishing food है, वही food मुझे choose करना चाहिए. और nourishing क्या है कि जो बात आत्मा को पसंद है, वही nourishing होगा. आत्मा को क्या पसंद है? शांति चाहिए उसको, प्यार चाहिए, पवित्रता चाहिए. तो बस उसी प्रकार के थॉट्स को चूज करो, ऑटोमेटिकली आत्मा ग्रो होगी और बॉडी भी हेल्दी होने लगेगी.
0: जो अननेसेसरी हम यू नो इरिटेट होते रहते हैं दूसरों के बारे में, गलत अननेसेसरी करते रहते हैं एक्चुअली. अगर अब आप सोचना शुरू करो तो बहुत सारे थॉट्स जो हैं, जो अगर इतना मेरी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, यू नो जो हम बार बार कहते हैं वेस्ट थॉट्स, पास्ट हो गया, जो हो गया, वो हम कंटिन्यूस करते रहते हैं. अब ये प्रोसेस क्या होगा?
1: चूज करने के प्रोसेस में दो चीजें होगी. एक तो ये है कि मैं जो चूज कर रहा हूँ, कोई एक्सटर्नल चीज मुझे कंट्रोल कर रही है. पहले भी हमने डिस्कस किया है कि लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो गया है. ये जो मैं थॉट ला

0: कि भी मैंने गलत चूज किया है ना, सिंगापुर जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पीस ऑफ माइंड इम्पोर्टेंट है. नहीं, अगर मेरे रिसोर्सेस वो अलाउ नहीं करते हैं तो बस मुझे अब इसमें चूज नहीं करना है. भी माई चॉइस इज कि भी मैं पीसफुल रहूं. भले भारत में भी कहाँ गए, थोड़ा हमने इंजॉय कर लिया और थोड़ा समय हमने इंट्रोस्पेक्शन किया, मेडिटेशन किया, थोड़ा साइलेंस में गए, तो उससे और ज़्यादा हैप्पीनेस बढ़ेगी और कोई प्रकार की बीमारियाँ नहीं आएगी, उसको मैं प्रिवेंट कर लूँगा.
1: तो ये एक चॉइस की जब बात आती है, अभी तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम अपनी चॉइस से कर रहे थे, थॉट्स नहीं क्रिएट कर रहे थे.
2: सी अगेन, हमें जब तक उसका डैमेज नहीं पता था, वी वर नॉट टेकिंग केयर. लेकिन अगर आज अगर डैमेज पता चल रहा है कि सिर्फ एक एस्पेक्ट पे नहीं, मेरे जीवन के हर एस्पेक्ट पे डैमेज हो रहा है, डोंट यू थिंक वी विल स्टार्ट टेकिंग केयर?
1: वी शुड. आई एम द मोटिवेटेड.
2: को बैठे बैठे हम सोचते रहते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये भी कोई करने की बात थी, ऐसा कर दिया, मैंने उसके लिए इतना किया था, उसने मेरे साथ. इट कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. लेट मी जस्ट टेल माई सेल्फ There's something happening.
1: I think my good my at times I'm feeling ki we should do it the other way around, you know. Let's look at the disease which we have.
2: It's not necessary ki wo disease tak manifest ho chuka hai. Ye bhi bahut important hai ki ho sakta hai mujhe aaj diabetes, thyroid in mein se koi problem nahi hai, lekin meri thoughts chalti hain us quality ki, to kahin na kahin damage shuru ho gaya hai. Why wait? कल आपने कहा कि भाई साहब ने कहा वॉक भी वो लोग कर रहे हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी लग गई है. तो ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम हमारा बना कि बीमारी होगी तब हम ध्यान रखेंगे. ध्यान रख लें, व्हाई गो थ्रू द प्रोसेस? व्हाई गो थ्रू द प्रोसेस? एंड इम्पोर्टेंट तो ये है, अगर मैं अपना ध्यान रख लेता हूँ तो मुझे भी नहीं होगी और मेरे आसपास जो एटलीस्ट मेरी क्लोज इमीडिएट फैमिली है उनका भी ध्यान हो जाएगा. सी, मैंने ऑफिस में अपना ध्यान नहीं रखा तो मुझे गुस्सा आया, मुझे बीमारी हुई, मैंने बच्चों को गुस्सा किया, उसका इफेक्ट उन पर आया, मेरी वाइफ परेशान हो गई, उसका इफेक्ट उस पर आया, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट टेकिंग केयर. एंड फिर हम कह रहे हैं इन सब का ध्यान रखना मेरी जिम्मेवारी. सो इट्स सच अ विशियस साइकिल.
1: एक्चुअली काम कराने के लिए, सी, जो जैसे आपने टाइप ही पर्सनालिटी भी बोली, परफेक्शनिस्ट होना अच्छा माना जाता है. सी, ही इज परफेक्शनिस्ट, उनका हर चीज एक्यूरेट होती है, तभी तो वो एक्यूरेट बन पाता.
2: हाँ, लेकिन उनकी हर चीज एक्यूरेट होना, अब दिस डजंट मीन कि मैं लेट बैक हो जाऊं और मैं अपना काम एक्यूरेटली नहीं करूं, लेकिन सबसे पहले क्या एक्यूरेट होना, मेरी स्टेट ऑफ माइंड. अगर आई एम अ परफेक्शनिस्ट तो मैं सबसे पहले अपने परफेक्शन की लिस्ट पर ये रखूं ऊपर कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड परफेक्ट होनी चाहिए. एक छोटा सा दाग यहाँ से वहां मुझे इरिटेट ना करते तो वो वहां मैं परफेक्शन ले आऊंगा, लेकिन यहाँ मैंने इतनी गंदगी क्रिएट कर दी, कैन आई कॉल माई सेल्फ अ परफेक्शनिस्ट? तो अगर आप परफेक्शन को अपनी क्वालिटी भी लेकर चल रहे हैं तो फिर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपनी वेलबींग को सबसे ऊपर रखेंगे ना. कि मेरी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पहले परफेक्शन हो, कुर्सी टेबल सामान काम ये तो सेकंड स्टेज पर आएगा, उसको भी अगर रख लें तो सबसे पहले आप ध्यान किसको रखेंगे? आप काम करते जाएं, बेस्ट तरह से करवाते भी जाएं, डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, दिस वी कैन टेक.
0: ये बात भी जो शिवानी बेन ने बताई ना, बहुत गहरी है कि भी अचानक बीमारी नहीं होती है. आज लोग ध्यान क्यों नहीं रखते, समझते मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन आप में स्लोली डैमेज हो रहा है. कहते डिजीज वो एक आइसबर्ग की तरह है, नहीं, उसकी टिप ही सिर्फ हमको दिखाई देती है. या तो ये भी कह सकते हैं कि बॉडी ऑर्गन्स को नेचर ने करीब 5 गुना ज़्यादा कैपेसिटी दी है. हार्ट का ही उदाहरण ले, हार्ट में ज़रूरत से 5 गुना ज़्यादा हेल्थ है या कैपेसिटी है. जब वो हार्ट 20% पर आ जाता है तभी आपको सिम्टम्स होते हैं.
2: मतलब कितना डैमेज हमने किया,
1: पहले कितना कर दिया है हमने. बेचारा हार्ट जो ऑर्गन था वो तो काफी स्ट्रॉन्ग था.
0: इवन जो ब्लॉक्स कहते ना, कोरोनरी ब्लड वेसल्स है हार्ट में, वो 60% भी अभी मेरी ब्लॉक हो सकती है शायद, लेकिन मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, मैं 4 सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ आराम से. जब वो 75-80% होगा तभी अंजाइना का पेन शुरू होगा. तो ना 70% तो टू मच है, इवन 10% भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए. तो मैं अगर इस बात को समझ लूं और ध्यान रखूं तो दिक्कत नहीं होगी.
1: तो क्या मैं अपनी इमोशंस से, अपनी इमोशंस पे काम करके मेरे को जो अब बीमारी है, सपोज हो गई है, उसको हैंडल कर पाऊंगा?
0: डेफिनेटली. मैं उसके पहले एक बात आपको बताता हूँ, इट मे बी नॉट क्वाइट मोटिवेटिंग. कुदरत ने अगर ऐसा किया होता कि मुझे एक थोड़ा सा नेगेटिव इमोशन आया, बीमारी हो गई, है ना, मैंने थोड़ी सी गलती की, डाइजेशन बिगड़ गया, खुद तकलीफ की, चेस्ट में पेन हो गया, तो मैं वो करता ही नहीं
1: इतनी दूर तक लेकर ही नहीं जाता.

0: तो कुदरत ने हमें 5 गुना ज्यादा कैपेसिटी दे दी है सोच के कि भी व्यक्ति स्वस्थ रह पाए तो अच्छा है,
1: लेकिन तब
0: तो
1: तक इसके वो हमने संस्कार बना लिया उसको, अपना हैबिट बना लिया।
0: और फिर नहीं, वी टुक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो चलता है,
2: जैसे रिश्तों में हम करते हैं, जैसे रिश्तों में भी हम करते हैं ना, किसी एक व्यक्ति वो सहन करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता हम दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, हमें लगता है ये तो कर लेंगे, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, फाइनली व्हेन दे गो यू नो मोर देन उनकी जो लिमिट थी, देन दैट विल कम आउट एज एन आउटबर्स्ट, सो मे बी आवर बॉडी आल्सो जस्ट देन इट्स लाइक एन आउटबर्स्ट के बाद बहुत हो गया, इतनी कैपेसिटी थी मेरे पास, बट हम फिर उसको तब देख रहे हैं जब उसने अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाकर अपना डैमेज कर लिया है,
1: तभी वो कई बार रिपेयर के बियॉन्ड हो जाते रिश्ते भी
2: हो ही रहे और बॉडी में भी। इसीलिए देन वी से ब्लड प्रेशर की दवाई कब तक लेनी है, सारी उम्र लेनी है।
1: हार्ट की भी सर्जरी करेंगे तभी होगा, ओपन हार्ट सर्जरी होगी तभी ब्लॉकेजेस हटाने की कोई और चीज़
2: नहीं। और जब सर्जरी कर रहे हैं तब साथ में डॉक्टर ये भी कहता है कि कुछ सालों के बाद ये ब्लॉकेज फिर भी हो सकता है, फिर भी सर्जरी करेंगे,
0: होता है ना, तो तीन तीन बार सर्जरीज हुए ऐसे कितने सारे लोग हैं। और जो एक आप बात बता रहे हैं ना हेल्थ की, उसको इमोशंस के साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, जैसे कि भी हमारे शरीर को कई न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे उदाहरण के रूप में हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम अच्छा होगा हड्डियां स्ट्रांग बनेगी, विटामिन ए अच्छा होगा आपकी आई साइट अच्छी होगी, तो ऐसे ही ऑर्गन्स को भी सिस्टम को स्पेसिफिक इमोशंस चाहिए
1: स्ट्रांग करने के लिए।
0: हाँ, और वो अगर आप में है, किसी भी सिंपल सी चीज भी, हार्ट का कनेक्शन प्यार के साथ है, जिनको जीवन में अच्छा प्यार मिला है तो उनका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। कहते हार्ट फ्लो इज इक्वल टू लव फ्लो, लव फ्लो जितना ज्यादा है हार्ट का फ्लो भी, ब्लड फ्लो ठीक होगा। ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम को सुख चाहिए कि भी जो सत्म जीवन में सेटिस्फेक्शन सुख का अनुभव करते हैं उनकी पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी होती है। दिमाग को ज्ञान चाहिए, जितना नॉलेज होगा, भले और नॉलेज भी साथ साथ आध्यात्मिक नॉलेज, वो जितना अच्छा होगा आपका दिमाग अच्छे से कार्य करेगा।
1: स्टिमुलेंट्स हैं उनके लिए,
0: हाँ उनके लिए कहेंगे न्यूट्रिशन है एक प्रकार का, नहीं न्यूट्रिशन डिफरेंट ऑर्गन्स को। लंग्स को पीस चाहिए, आप स्वयं भी अनुभव करना कि जब आप पीसफुल है तो सांस की गति सही होगी, डीप होगी, रेगुलर होगी, जब पीसलेस है तो सांस तेजी से चलने लगेगा।
1: तो अस्थमाटिक अगर हैं लोग
0: तो उनको जो पीस मिले ज्यादा तो अस्थमा पर जरूर उनका विजय होगा, उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी प्रकार से जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, आंख नाक कान आदि, उन सबको पवित्रता चाहिए। कहा भी गया ना कि बेनी आंख कमल नाक कमल, ऐसे देवताओं को उसके साथ कंपैरिजन किया गया, क्योंकि कमल पवित्रता का प्रतीक है। और हड्डियां और मांसपेशियों को शक्ति चाहिए, जितनी शक्ति होगी तो हड्डियां और मांसपेशियां भी मजबूत होगी। और जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको आनंद चाहिए। आज एन एक्साइटमेंट मिल रहा है लोगों को, सच्चा आनंद नहीं मिल रहा है। अगर सच्चे आनंद का अनुभव करो तो ऑटोमेटिक आपकी सारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो सही कार्य करने लगे।
1: दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पर काम करके हम अपनी सारी बीमारियों को एक्चुअली रिवर्स कर पाएंगे। ये तो बात रही आज जो हमने रियलाइज किया कि ये सारे दिन में हम जो जो जो जो इमोशन क्रिएट कर रहे हैं अननोइंगली ही, यू नो, लेकिन क्रिएट, आई एम सेइंग द राइट वर्ड्स नाउ, दैट वी आर क्रिएटिंग, वी आर चूजिंग, वी आर क्रिएटिंग। सो और दूसरी बात जो आपने कहा कि हर ऑर्गन को क्या चाहिए, उसका न्यूट्रिएंट क्या है, ताकि वो आज बीमारी नहीं भी है तो वो मजबूत रह पाएगा, उस पर और बात करेंगे। और हील अपने आप को, हम अपने ही शरीर को कैसे कर पाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच ओम शंशी। आज एक और बात पता चली है, अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर हमने जितनी बातें की उसमें रिश्ते हील हुए, हम खुद इमोशनली मन से हील हो रहे थे, शरीर एक ऐसा एस्पेक्ट था जो बहुत ज़रूरी था, उसकी दर्द, उसकी जो बीमारियां थी वो हमें परेशान करती थी। आज ना सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ करने के प्रोसेस में है, बल्कि अपनों को अभी जो बड़े हो रहे हैं, चाहे बच्चे या परिवार के बाकी सदस्य, वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप उनके साथ शेयर कर पाएंगे कि कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम जान रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं लाइफ को जीने की। कोई बात मन में है, कोई सवाल है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क करें। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी. ओम शांति.

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जरा उस मछली की कल्पना कीजिए।

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जरा उस मछली की कल्पना कीजिए जो अथाह और अनंत समंदर के बिल्कुल बीचों बीच तैर रही हैं। उसके ऊपर भी अनंत जल हैं, नीचे भी अनंत जल हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा में केवल और केवल वही सागर हिलोरे ले रहा है। जब अगर कोई उस मछली से पूछे कि तुम कहाँ जा रही हो और कहाँ ठहरने का इरादा है, तो मछली क्या जवाब देगी? उसके लिए कहीं जाने की कोई अलग जगह बची ही नहीं, क्योंकि वहाँ जहाँ भी जाती हैं समंदर में ही होती हैं और किसी सीमित बिंदु पर ठहरने की कोई ज़मीन नहीं बची, क्योंकि पूरा का पूरा समंदर ही उसका

0: मित्रांना संदेश
1: करा.
0: नक्कीच आपण सर्वांनी अशाच प्रकारे वागाल आणि
2: ऐकत होतात रिम अपनी कुछ ख्वाहिशें होती है, कुछ सपने होते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हम पूरा पूरा प्रयास भी करते हैं. कभी कभी किस्मत साथ देती है, कभी कभी हमारे साथ खेलती भी है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. आपल्यामध्ये जर काही बनण्याची क्षमता असेल तर आपल्याला आपल्या ध्येयापर्यंत पोहोचण्यापासून कोणीच थांबवू शकत नाही. सो फ्रेंड्स, ये बात तो 100% सच है. हमने अगर अपनी मंजिल तय की है तो रास्ता भी होगा और हमें मंजिल नहीं जाएंगे. इसमें आपको इस प्रोग्राम का अगला सॉन्ग

युवा मित्रांनो, सुरुवातीला विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तराची तुम्ही कदाचित वाट बघत असाल, नाही का? चला मी त्याचं उत्तर आता तुम्हाला सांगत आहे. त्यापूर्वी आजचा प्रश्न पुन्हा एकदा जाणून घेऊया. आजचा प्रश्न होता, महाराष्ट्र राज्याची स्थापना कधी झाली? तर महाराष्ट्र राज्याची स्थापना येतील. आज प्रोग्राम यही खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि आप जो सेगमेंट है आपको कैसे लगता है. और दूसरी बात, मैं जो आपको प्यारे प्यारे एफएम रेडियो के सविता जाधव सा प्रेमा का इंतजार करूंगी, तब तक सविता को इजाजत दीजिए. चला ऐकणाऱ्या सर्व माझ्या फ्रेंड्स ना सविता जाधव सा प्रेमाचा स्नेहाचा नमस्ते. प्रोग्राम में खास कर उगवते कलाकार, ये जो सेगमेंट है आपको शायद पसंद आते होंगे. पर स्वर अनंत एफएम रेडियो केंद्र, मुझे खत जरूर लिखिएगा इस पते पर. कार्यक्रम युवा शक्ति, मुझे खत जरूर लिखिएगा इस पते पर. कार्यक्रम युवा शक्ति, स्वर अनंत एफएम रेडियो केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र करड़ा, तालुका रिसोड, जिला वाशिम. सो फ्रेंड्स, आप मुझे खत जरूर लिखिएगा, मैं आपके खत का इंतजार करूंगी. तब तक सविता को इजाजत दीजिए. चला ऐकणाऱ्या सर्व माझ्या फ्रेंड्स ना सविता जाधव चा प्रेमा है. और दूसरी बात, मैं जो आपको प्यारे प्यारे सॉन्ग सुनाती हूँ और युवा शक्ति प्रोग्राम में खास कर, क्योंकि आपके खतों का हमें इंतजार जो होता है. और आपको ये सेगमेंट कैसा लगता है, युवा शक्ति प्रोग्राम कैसे लगता है, और युवा शक्ति प्रोग्राम में खास कर उगवते कलाकार, ये जो सेगमेंट है आपको कैसे लगता है, और जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि आपके खतों का हमें इंतजार जो होता है. और आपको ये सेगमेंट कैसा लगता है, युवा शक्ति प्रोग्राम कैसे लगता है, और युवा शक्ति प्रोग्राम में खास कर उगवते कलाकार, ये जो सेगमेंट है आपको कैसे लगता है. और दूसरी बात, मैं जो आपको प्यारे प्यारे सॉन्ग सुनाती हूँ वो भी आपको शायद पसंद आते होंगे. तो चलिए, मुझे खत जरूर लिखिएगा, मैं आपके खत का इंतजार करूंगी. तब तक सविता को लिखिएगा. तो चलिए, मुझे खत जरूर लिखिएगा, मैं आपके खत का इंतजार करूंगी. तब तक सविता को इजाजत दीजिए. चला ऐकणाऱ्या सर्व माझ्या खत जरूर लिखिएगा, मैं आपके खत का इंतजार करूंगी. तब तक सविता को इजाजत दीजिए. चला ऐकणाऱ्याचा स्नेहा जा, तो चलिए इंतजार करूंगी. तब तक सविता को इजाजत दीजिए. चलिए इंतजार करूंगी. तब तक सविता को इजाजत दीजिए.

0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साथो। दोस्तों, जरा उस मछली की कल्पना कीजिए जो अथाह और अनंत समंदर के बिल्कुल बीचों बीच तैर रही हैं। उसके ऊपर भी अनंत जल हैं, नीचे भी अनंत जल हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा में केवल और केवल वही सागर हिलोरे ले रहा है। जब अगर कोई उस मछली से पूछे कि तुम कहाँ जा रही हो और कहाँ ठहरने का इरादा है, तो मछली क्या जवाब देगी? उसके लिए कहीं जाने की कोई अलग जगह बची ही नहीं, क्योंकि वहाँ जहाँ भी जाती हैं समंदर में ही होती हैं और किसी सीमित बिंदु पर ठहरने की कोई ज़मीन नहीं बची, क्योंकि पूरा का पूरा समंदर ही उसका घर बन चुका है। जब साधक की चेतना उस विराट परमात्मा में एकाकार हो जाती हैं, तो उसकी दशा भी ठीक उसी मछली जैसी हो जाती हैं, जहाँ सारे द्वैत, सारी दिशाएं और आने जाने के सारे रास्ते समाप्त हो जाते हैं। कबीर साहब आज हमें उसी अनिर्वचनीय और परम रहस्यमयी स्थिति का दर्शन करा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर का यह सूत्र। जाइबे को जगह नहीं, रहिबे को ठोर। जाइबे को जगह नहीं, रहिबे को नहीं ठोर। कहे कबीरा संत हो अब अगति।

0: तेरे साथ हो अगति की गति। और श्रोताओं, कबीर साहब आत्म साक्षात्कार की उस परम अद्वैत स्थिति का उद्घाटन करते हुए कहते हैं, जाई बेको जगह नहीं। जब जीव को यह बोध हो जाता है कि वह परमात्मा कण कण में भीतर और बाहर पूरी तरह व्याप्त हैं, तो फिर उसके जाइबे को यानी कहीं अलग जाने की कोई दूसरी जगह बचती ही नहीं। जहाँ देखो वही वह साक्षात मौजूद हैं, रही हुई को नहीं ठोर। और इस नश्वर संसार की किसी सीमा, किसी देह या किसी एक निश्चित ठोर यानी भौतिक स्थान पर टिके रहने का भी कोई आधार नहीं रहता, क्योंकि वह सीमित अहंता ही मिट चुकी है। इसलिए अलौकिक स्थिति को और संतों का ध्यान खींचते हुए कबीर कहते हैं, कहे कबीरा संत हो, हे संतो, हे साधकों, इस परम सत्य को ध्यान से समझो। अभिगति की गति और उस अभिगति यानी अव्यक्त, अगोचर, निराकार परब्रह्म और उसकी अनुभव की गति यानी अवस्था दुनिया के तमाम तर्कों, शब्दों और अनुमानों से बिल्कुल और यानी सर्वथा भिन्न, विलक्षण और अनिर्वचनीय है। उसे केवल वही जान सकता है जो उसकी पूरी तरह विलीन हो चुका हो। यह दोहा मांडुक्य और छांदोग्य उपनिषद के सर्व खलवीद ब्रह्मा तथा तूर्य अवस्था का शिखर है। जब तक मनुष्य खुद को एक अलग व्यक्ति मानता है, तब तक उसके लिए यहाँ से वहाँ जाना और यहाँ रहना बना रहता है। लेकिन जैसे ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है, देश और काल की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। अभिगति का अर्थ यह जो इंद्रियों के दायरे में नहीं आता, कबीर समझा रहे हैं कि परमात्मा को किसी मंदिर, तीर्थ या किसी खास दिशा में जाकर नहीं पाया जा सकता। जब अहंता शून्य होती है, तो जीव हर दिशा में उसी अभिगति के असीम विस्तार का अनुभव करने लगता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने इस आने जाने और भागदौड़ के भ्रम को गहराई से देखिए। हम पूरी जिंदगी किसी न किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए दौड़ते रहते हैं, कभी धन के पीछे, कभी पद के पीछे, तो कभी मोक्ष की कल्पना के पीछे। हम सोचते हैं कि शांति कहीं दूर, कहीं दूसरी जगह पर मिलेगी। आज कबीर इस सूत्र से समझा रहे हैं कि वह परम तत्व कहीं दूर नहीं, बल्कि इसी क्षण आपके भीतर और बाहर हर जगह मौजूद है। व्यर्थ की मानसिक दौड़ धूप को विराम दीजिए। उस राम नाम के असीम विस्तार में अपनी मैं को विलीन कर दीजिए। जब आप इस अविनाशी सत्ता में समा जाएंगे, तो आपकी सारी यात्राएं पूरी हो जाएंगी और आप उस परम स्थिति को पा लेंगे जिसकी महिमा शब्दों से परे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केला आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट
2: टच 69 वा तथागत। माणूस हा मानवी संस्कारांनी परिपूर्ण असला पाहिजे। त्यासाठी प्रज्ञावान माणसाला शील संवर्धनातून तू दाखविलास आर्य अष्टांगिक मार्ग। या मार्गाने चालल्यावर माणूस फक्त मानवी अवयवाने माणूस ठरत नाही, तर तो त्याच्या संपूर्ण विवेकी आचरणासह माणूस ठरत जातो नीतिमान आचरणाचा। हे नीतिमान आचरण असते अति महत्वाचे। चतुष्पाद प्राण्यापासून आचरणाने विभक्त करण्यासाठी माणसाची ओळख असावी म्हणून दुसऱ्याचे दुःख जाणणारा, चांगल्या गोष्टीसाठी कार्यासाठी सुखोपभोगांचा त्याग करणारा नीतिमान माणूस संस्कृतीचे संवर्धन करतो, तो कोणत्याही भेदाभेदात अडकत नाही। त्याच्यासाठी विश्वकल्याणाच्या दिशा हीच मानवी संस्कृतीची आशा, तो मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्गामध्ये इच्छाशक्तीला महत्व आहे। आर्य अष्टांगिक मार्गातील पहिला मार्ग म्हणजे सम्यक दृष्टी होय। सम्यक दृष्टी म्हणजे अविद्येचा विनाश, सम्यक दृष्टी म्हणजे मिथ्या दृष्टीची विरुद्ध बाजू होय। अविद्येचा विनाश सम्यक दृष्टी करते म्हणजे नेमके काय, म्हणजेच अविद्या कशाला म्हणावी? मनुष्याला दुःखाचे अस्तित्व तसेच दुःख निरोधाचा उपाय ही उदात्त सत्य न समजणे म्हणजेच अविद्या होय। हेतूच आहे सम्यक दृष्टीचा असा की समजले पाहिजे माणसाने कर्मकांडाच्या विधींना व्यर्थ आणि सोडून द्यावा त्याने मिथ्या विश्वास, शास्त्रांच्या पावित्र्यावरील अद्भुत कल्पनांचा त्याग करावा त्याने सम्यक दृष्टी पुष्ट होण्याकरिता। होऊ शकते कोणतीही गोष्ट निसर्ग नियमाविरुद्ध हे मानता कामा नये सम्यक दृष्टीच्या माणसाने। असेल ज्या सिद्धांतांना वास्तवतेचा किंवा अनुभवाचा आधार, ते असतात योग्य, परंतु काल्पनिक अनुमाने आहेत त्याज्य सम्यक दृष्टीसाठी। ज्याला करता येत नाही अविद्येचा विनाश, त्याच्यामध्ये नाही स्थिर होऊ शकत सम्यक दृष्टी। सम्यक दृष्टीशिवाय माणूस म्हणजे अंधार कोठडीतील कैदी संभावा। सम्यक दृष्टीशिवाय माणूस म्हणजे आकलन शक्तीचा अभाव होय। तेव्हा सम्यक दृष्टी विकसित करण्यासाठी इच्छाशक्ती असावी आणि द्यावी गती त्याने इच्छाशक्तीला। म्हणजे गळू लागतील बंधने आणि होऊ लागेल तो बंधमुक्त, पडू लागतील त्याची पावले स्वातंत्र्याकडे सम्यक दृष्टीकडील प्रवासाने। म्हणून मन नसावे बंधनात, मन वळावे योग्य दिशेला, तर होऊ लागतो माणूस बंधमुक्त आणि कळू लागतो त्याला सम्यक दृष्टीचा अंतिम उद्देश। अन्यथा अंधार कोठडीत पडलेला कैदी हा आंधळ्या माणसासारखा असतो सम्यक दृष्टी नसल्यामुळे। सम्यक दृष्टीला आकळते दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य आणि दुःख निरोधाचा मार्ग। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाती, जरा अशी चिकित्सा उभारते सम्यक दृष्टीमध्ये आणि ज्ञान जाणीवांच्या पायऱ्या सक्षम

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबके साथ हैं। बात कर रहे हैं हम लाइफ स्किल्स की, कितनी स्किल्स हमने सीख ली इस पूरे जीवन में नहीं सीख पाए थे, तो लाइफ को कैसे जीना है इस स्किल को हम इस श्रृंखला में जान रहे हैं। बहुत कुछ हमने जाना अपने विचारों के बारे में, और अगर पिछली कड़ी देखें तो एक बहुत बड़ा रिवलेशन था कि मैं जो भी थॉट क्रिएट कर रही हूँ, जो भी फीलिंग्स क्रिएट कर रही हूँ, वो मेरे बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, और कई बीमारियाँ जिन्हें मैंने लाइफस्टाइल मान लिया था वो बहुत कुछ मेरे इन थॉट्स इन फीलिंग्स के कारण क्रिएट हो रही थी। आज बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या इस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है? बीमारियाँ हैं तो क्या थॉट और फीलिंग क्रिएट करके उन बीमारियों से मैं मुक्त हो सकती हूँ? हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, दोनों का स्वागत। डॉक्टर पटेल, एक छोटा सा रिकैप आपके साथ करना चाहेंगे, क्योंकि इट्स समथिंग न्यू, यू नो, ये तो अभी तक सुना था कि हाँ अगर गुस्सा करते हैं वो बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है, लेकिन वी नेवर थॉट, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि उसको ठीक किया जा सकता है, कि कौन सी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के जो हमारी जो स्ट्रॉन्ग और टॉक्सिक इमोशंस हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है।
1: जब तक हमने देखा है कि मेनली तीन सिस्टम्स, एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक है, जिसका संतुलन होना चाहिए, परंतु इन टॉक्सिक इमोशन से वह संतुलन हो जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत ज़्यादा काम करने लगती है और बहुत सारी बीमारियां होती है। दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इम्बैलेंस आता है और वह थोड़ा सा भी इम्बैलेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और तीसरी बात कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के द्वारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे रेजिस्टेंस पावर पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, और उससे भी न केवल अनेक बीमारियां होती है परंतु कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है बॉडी को ही दुश्मन मान लेती है और उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो तीन मुख्य बातें हैं
0: जी, उसके अलावा भी बॉडी के किसी सिस्टम पे ये इमोशंस वर्क करते हैं।
1: और एक जो इससे भी गुहीर, शायद इससे भी सूक्ष्म है, यहाँ भी डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, परंतु हम उसके बारे में सजग हो जाए इसलिए बता रहा हूँ, कि ब्रेन में 900 से ज्यादा केमिकल्स है और वह केमिकल्स बड़ी सूक्ष्म मात्रा में, उनका भी सही मात्रा में वह केमिकल्स होने चाहिए, अगर कम हुए तो भी समस्या होगी, बढ़ गए तो भी प्रॉब्लम होगा, और इस टॉक्सिक इमोशन से उन केमिकल्स पर बुरा असर होता है। कभी आपको कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो और आप डॉक्टर के पास जाओ और पूछो कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, तो उसका स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि भी केमिकल इम्बैलेंस हुआ है।
0: मतलब हम भी इतनी बार सुन चुके हैं कि हाँ कुछ केमिकल इम्बैलेंस हुआ है,
1: तो ये एक एक इमोशंस भी वो केमिकल में इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जैसे कि
0: ये उसको थैलेमस, उसको ब्रेन को टच करती है क्या?
1: हाँ, पहले तो हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट करेगी और फिर जो सारे ब्रेन के केमिकल्स है उन सब में भले इनिशियली माइनर डिस्टर्बेंस होगा, परंतु अगर कंटिन्यू हो तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, साथ साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स होने की संभावना भी बहुत बढ़ सकती है।
0: क्या पर्टिकुलर इमोशंस पर्टिकुलर ऑर्गन्स पर इफेक्ट डालते हैं? जैसे हेट्रेड है या यू नो लाइक बहुत ग्रीड है, एंगर है, वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स पर काम करते हैं?
1: हाँ बिल्कुल, कुछ तो रिसर्च हुई है, मैं तो समझता हूँ और भी इसके बारे में अगर कोई सिस्टमेटिक रिसर्च हो तो बहुत बड़ी बात लोगों के सामने वो रिवील हो सकती है, परंतु अब तक जो रिसर्च हुई उसमें पता चला है कि जिनकी टाइप ए पर्सनालिटी होती है, कि जो लोग परफेक्शनिस्ट है, सब कुछ उनको टाइम पर चाहिए, एक चीज यहाँ से यहाँ ना होने तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे जो टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं उनमें माइग्रेन बहुत ज्यादा होता है, उनको ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
0: पर क्यों होता है ऐसे?
1: अभी यहाँ भी ये मैकेनिज्म तो सेम है कि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगी तो ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, माइग्रेन हेडेक हो सकता है, ब्लड वेसल्स पर इफेक्ट होगी उससे भी माइग्रेन होगा, परंतु स्पेसिफिक इमोशंस की जहाँ तक बात है यह भी प्रूव हुआ है कि जो लोग हाइपर क्रिटिकल है, कि छोटी छोटी बातों में क्रिटिसाइज करेंगे, नेगेटिविटी कोई दूसरे में देखेंगे, उनको कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं देता है, इस प्रकार की जिनके मेंटेलिटी है उनको भी हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है।
0: हर एक में बुरा ही देखते हैं जो हम।
1: और ये भी देखा गया है कि जो सप्रेशन में जीते हैं, ये जो दबाव में जीते, जिनको लगता है कि परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उनको हाइपोथायराइड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब देखना, हाइपोथायराइड अधिकतर महिलाओं में क्योंकि किसके अंडर में जीना पड़ता है,
0: सफोकेटेड जब फील करते हैं।
1: हाँ, जब भी ये फीलिंग हो तो हाइपोथायराइड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। डायबिटीज के लिए भी माना गया है कि जो लोग बहुत ग्रीडी है, ये चाहिए एक्युमुलेट करना चाहते हैं,
0: ना केवल फिजिकली। कई बार ये इनसिक्योर भी लोग भी तो ग्रीडी हो जाते हैं।
1: हाँ हाँ, बस इनसिक्योरिटी फिर ग्रीडीनेस में लाएगी और ग्रीडीनेस के कारण भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ेगी।
0: अच्छा,
1: वो लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी है। हाँ। परंतु ये सूक्ष्म फैक्टर्स है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह भी देखा गया है कि जो लोग असंतुष्ट है जीवन में, सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में, उनको पेट के प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। एक होता है कोलाइटिस, एक है माइल्ड एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, ये सब पेट की बीमारियां हैं। वो पेट की बीमारियां होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। इस पर अगर और अच्छे से रिसर्च किया जाए तो सचमुच गहरी बातें सामने आ सकती है कि भी कौन सी फीलिंग्स, इमोशंस वो कौन सी बीमारियां निर्माण करते हैं।
0: जैसे शिवानी, अभी तक हम फीलिंग्स को ये मानते थे कि वो नेचुरल है, मतलब उनका ऐसे सिस्टम पे, बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ना, तो आई कुड एक्चुअली नेवर इमेजिन। मैं अभी भी रिलेट नहीं कर पा रही हूँ कि अगर मैं ग्रीडी हूँ या एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ तो मेरे को डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं।
2: एक्चुअली ऑल द मोर इम्पोर्टेंट लग रहा है ये सुनने के बाद कि अपने इश्यूज को रिजोल्व करना कितना जरूरी है। यू नो, सप्रेस्ड फील कर रहे हैं, और सप्रेस्ड फील करना भी मतलब क्या कि सिचुएशन के रिस्पॉन्स में पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ थॉट्स क्रिएट करना, एंड वी कैन लिव विद दैट थॉट पैटर्न फॉर अ लाइफ टाइम। अब ये जो बीमारी है, दिस माइट यू नो डिवेलप 25 के बाद, 35 के बाद, 45 के बाद, लेकिन उसकी शुरुआत तो फिर कितने साल पहले शुरू हो गई थी। तो आज अगर हम अपने थॉट पैटर्न का बच्चों के लेवल से ही ध्यान रखना शुरू करें, इट्स नॉट गोइंग टू बी कि हाँ हम तो अपना तो ध्यान रखें।
0: yes, बच्चों को अगर हम देखें तो कितना सप्रेस्ड फील करते हैं,
2: क्योंकि उनके अभी एक एक ऑर्गन डेवलप हो रहा है एंड उनकी वो जो फिजिकल डेवलपमेंट वो हो रही है, एंड अब अगर वो इतनी यंग एज से ये सारे इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इफ वी गो बैक टू स्टूडेंट लाइफ, तो हमारे पास स्ट्रेस कोई वर्ड नहीं था वोकैबुलरी में, ये सब जो अब फील हो रहा है। तो अगर हमारी जो जेनरेशन थी जिनकी इमोशनल लाइफ फिर भी काफ़ी बैलेंस्ड थी, लेकिन फिर भी आज हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इट इज़ स्केरी टू थिंक कि अब के जो बच्चे हैं जिनकी इमोशनल लाइफ ही अभी से इतनी अनबैलेंस्ड है, आफ्टर 30-35 इनकी फिजिकल हेल्थ कैसे होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ, क्योंकि इनकी इमोशनल भी वीक है और इमोशनल के कारण फिजिकली अभी से वीक हो रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट।
0: ऑर्गन्स ही वीक डेवलप होंगे, इसका मतलब
1: यही बात है। कई लोग इसमें ये भी प्रश्न पूछते हैं कि भी ये टाइप ए पर्सनालिटी तो बहुतों की है, तो सबको क्यों ना हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि जिनका हार्ट ऑलरेडी वीक है और कोई कारण से भी, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसके कारण हार्ट पर ऑलरेडी इफेक्ट हुई है, तो उनमें इमीडिएटली टाइप ए पर्सनालिटी की इफेक्ट होगी और हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे भी किसी में ऑलरेडी उनका थायराइड वीक है, जेनेटिकली उनमें ऐसे जीन्स है कि जिससे थायराइड 100% कार्य नहीं कर रहा है, परंतु और बातें आ गई साथ में, सप्रेशन फील कर रहे, तो थायराइड की समस्या होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसे जो ऑर्गन्स जेनेटिकली वीक है और कोई एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण वीक है, उन पर इमीडिएट इफेक्ट होगी।
0: और लेकिन अदरवाइज आप कह रहे हैं कि अगर जेनेटिकली स्ट्रांग है तो ग्रेजुअल तो उन पर असर होगा,
1: भले टाइम लगेगा परंतु इफेक्ट तो हो ही रही है।
2: लेकिन आजकल जो बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज यंग एज पे हो रहा है, डिप्रेशन भी हो रहा है, आपने जैसे कहा केमिकल इम्बैलेंस है, लेकिन वो केमिकल इम्बैलेंस इमोशंस के कारण है। डिप्रेशन स्टूडेंट लाइफ में होना, दैट मीन्स वो इमोशनल इम्बैलेंस तो शुरू हो चुका है ना, एंड दिस इज सो मच बिकॉज ऑफ हम भी अपनी जो इमोशनल एनर्जी उन पर डाल रहे हैं सारा दिन, एंड फिर जो आपने कहा ये हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। हम तो अपने बच्चे को टूडे नाउ आई फील के सिर्फ इमोशनली वीक नहीं कर रहे, फिजिकली भी वीक कर रहे हैं, एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क टू ईच वन ऑफ अस।
0: ओबेसिटी भी किसी इमोशन के कारण?
1: हाँ हाँ, एक तो बहुत मुख्य बात तो ये है कि जो हम खाते हैं वो यही नहीं है कि भी आपको भूख लगी, बॉडी को जरूरत है इसलिए खा रहे हैं। एक है साइकोलॉजिकल हंगर ऑल्सो, इसको नहीं आम भाषा में हम कहते झूठी भूख। व्यक्ति भी समझता है कि मैं अभी खाया है, पेट भर के खाया है, फिर से मुझे आधे घंटे में भूख लग रही है, वो समझता है कि झूठी भूख है। ये झूठी भूख साइकोलॉजिकल है क्योंकि अंदर में डिससेटिस्फेक्शन है, और व्यक्ति खाने से सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने की कोशिश करता है और फिर ओबेसिटी भी हो सकती है और बच्चों में भी यही कारण है बहुत बड़ा।
2: अब हम जब बच्चों के कारण के बारे में अगर आपस में सोचते हैं या बात करते हैं ओबेसिटी की, वी ओनली से बहुत टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं, बाहर आउटडोर नहीं जा रहे एंड जंक फूड खा रहे हैं, हुएवर थॉट कि उनका थॉट पैटर्न ये ओबेसिटी क्रिएट कर रहा है।
0: आई थिंक पेरेंट्स को रियलाइज ही नहीं हो पाता।
2: अब हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, बच्चे को जंक फूड से दूर करेंगे, टीवी से दूर करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम पर नहीं हिट करेंगे जो इंटरनल है, तो आउटवर्ड भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती ही नहीं,
0: डिससैटिस्फेक्शन की तरफ जाया जाए।
2: क्यों मेरा बच्चा डिससैटिस्फाइड है, क्या उसको अंदर खालीपन लग रहा है, बाहर हमारे घर में सब कुछ है फिर भी क्या चीज की कमी वो महसूस कर रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन टुडे आर मिसिंग देयर पेरेंट्स, यू नो, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है वो खालीपन, वो एम्प्टीनेस। क्यों ये बीमारियां आज ही हो रही हैं, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी इन चिल्ड्रन टुडे, व्हाई नॉट 20 इयर्स बैक। फिर हम हमेशा ब्लेम आउट पर डाल रहे हैं कि आज की लाइफस्टाइल ऐसी, इट मे बी वन फैक्टर, लेकिन दूसरे फैक्टर को भी तो हमें देखना पड़ेगा।
0: यू नो पेरेंट्स को मिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई बार पेरेंट्स जितनी देर है उतनी देर भी उनके साथ।
2: हाँ, इट्स नॉट अबाउट द टाइम, देखो पेरेंट्स ने जॉब पे तो जाना ही है, चाहे दोनों ने जाना है, लेकिन जितनी देर है तो भी उनकी मेंटल स्टेट क्या है, और फिर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सी एनर्जी बच्चों को देनी है, वो तो नहीं उल्टा और ही उसके विपरीत दे रहे हैं, क्योंकि खुद ही इतने स्ट्रेस होकर आए हैं। इफ आई हैव नॉट टेकन केयर ऑफ माई सेल्फ द होल डे, आई कांट टेक केयर ऑफ समवन एल्स आफ्टर दैट, नॉट पॉसिबल,
0: इमोशनली नहीं कर पाते हैं। कैसे मुड़े जो गलतियां हो चुकी, जो बीमारियां लग गई, क्या ये रिवर्स किया जा सकता है प्रोसेस?
1: बिल्कुल कर सकते हो। सबसे पहली बात है कि भी स्वीकार करो। मैं समझता हूँ दिक्कत यहीं पर है कि कई लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं करते। सचमुच नहीं, बाहर सबको पता चल रहा है कि भी इनमें बहुत गुस्सा है, ये टाइप ए पर्सन है, परंतु व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं मैं तो अच्छा ही हूँ। तो पहला तो स्टेप यही है कि आप स्वीकार करो कि भी मेरे में से नेगेटिव इमोशंस है,
0: मैं आपको ये बता रही हूं, इसीलिए स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि आज तक हम सोचते थे कि मेरे को गुस्सा मेरे कारण से नहीं आ रहा है, लोग ही ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे बिहेव करते हैं तो गुस्सा तो आएगा ही।
2: आज दिन तक हम गुस्से को इसलिए शस्त्र की तरह यूज करते आ रहे थे कि उनको ठीक करना है, वो बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, तो फॉर देयर डिसिप्लिन वी वर यूजिंग एंगर विदाउट रियलाइजिंग कि अपना कितना नुकसान उस प्रोसेस में हो रहा है कि हम दूसरों को ठीक कर दें। द डैमेज डन टू मी वी नेवर थॉट अबाउट। अगर आज भी वो रोशनी आ गई है, मे बी वी कैन क्रिएट मैजिक विद आवरसेल्व्स नाउ।
0: आई नो, सो ये रोशन, चलिए हम स्वीकार कर रहे हैं, आगे।
1: अभी सेकंड स्टेप ये है कि भी ये समझना चाहिए कि थोड़ा डीप है, सिर्फ सुपरफिशियली नहीं देखो। हम सुपरफिशियली देखते हैं कि मैं सवेरे उठा तो फ्रेश था, काम पे गया अच्छे से गया, मैंने ठीक से काम किया, घर पे आया तब बच्चों के लिए थोड़ा टाइम भी मैंने दिया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु आप डीप में नहीं गए। अगर आप डीप में गए तो पता चलता कि भी सवेरे उठा तब इरिटेशन था कि ये चीज़ जगह पर नहीं थी, ये मुझे मिला नहीं, ट्रैवल कर रहा था तो ट्रैफिक जाम में डिस्टर्ब हुआ था, हाँ बॉस ने कुछ बोल दिया तो तब भी मेरे में फीलिंग आई थी। वह सेकंड लेवल होना चाहिए कि डीपर जो सूक्ष्म में भी संकल्प चल रहे हैं उसके बारे में भी सजग हो जाओ।
0: मुझे उसको भी कैच करो। बातें चलती जाती हैं, कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन।
2: हमने कई बार बात की ना, सुबह बच्चों को हम उठाते कैसे, सी द डे स्टार्ट्स ओनली विद एंगर एंड इरिटेशन, सिर्फ मेरे लिए नहीं बच्चे के लिए भी, और ये हर रोज का पैटर्न है, ये भी नहीं कि कभी कभी ऐसा हो रहा है, इट्स अ डेली पैटर्न। तो अगर हमें ये अवेयरनेस आ जाए, हम छोटी छोटी बातों पर भी अगर शुरू कर लें, बड़ी बातों पर तो अपने आप हो जाएगा, फिर इट विल बी इजियर इफ वी स्टार्ट ऑन दीस स्मॉलर थिंग्स।
1: वो एक सेकंड स्टेप होना चाहिए कि भी डीप उसको अंडरस्टैंड करें,
0: अवेयर हो जाए कम से कम।
1: हाँ या अवेयर हो
0: कॉन्स्टेंट,
1: और फिर उसको एनालिसिस करो, फाइंड आउट करो, उस चीज को चेंज कर दो, तो जब शुरुआत हो रही है ना तभी कंट्रोल कर सके।
2: इसीलिए अवेयरनेस इम्पोर्टेंट होगी कि सारा दिन चेक करना क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, थोड़ा सा भी राइट क्वालिटी का नहीं है, लेट मी रिमाइंड माई सेल्फ कि मैं अपना डैमेज कर रहा हूँ. दैट्स वाई कॉन्स्टेंट एक अवेयरनेस, फिर वो एक नेचुरल हो जाएगी. शुरू में थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ता है. वी हैव सीन विद एक्सपीरियंस कि आफ्टर सम टाइम आपके जब इस तरह के डिस्टर्बिंग थॉट्स चलने लगे, आपको खुद दिखाई देगा. जैसे बाहर कोई डिस्टर्बेंस हो आपको दिखाई देती है, ये आपको दिखाई देगी. जैसे ही दिखाई देगी, यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इट.
0: वी फील गुड. How you feeling? How you feeling? You know, see.
2: नहीं, but feeling तक भी नहीं पहुँचेगी वो.
0: Thought तक. हाँ.
2: Feeling में भी ना थोड़ी देर में आती है. जब एक particular series of thoughts कुछ time तक चल रही है, then I start feeling, you know, like this. But if I am able to just look at it at the level of thought, why even go to the next stage of the process plan to the feeling?
0: जिसमें फिर वापस लाने में आपको time लगेगा. Okay, हमने ये सजगता रखी सारा दिन.
1: फिर अभी next step तो ये है कि भी इसको हम चूज करें. हमने काफी बार इसको डिस्कस किया है कि भी हम स्वयं अपने थॉट क्रिएट करते हैं. या तो दूसरी बात इससे भी बड़ी सिंपल है कि हम अपने थॉट्स को चूज करते हैं. जैसे हम खाना चूज करते हैं, कपड़े चूज करते हैं, ऐसे विचारों को भी हम चूज करते हैं.
0: तो देयर इज अ बुफे ऑफ थॉट्स.
1: थॉट्स, या
0: यू पिक देम अप व्हिच आर गुड फॉर योर हेल्थ.
1: True.
2: Yes, beautiful. Yeah, absolutely.
0: See, buffet में भी हम वो बड़ा healthy food choose करते हैं. So similarly, let's choose.
1: हाँ, यहाँ पर भी हम वैसा ही food choose करें कि जो आत्मा के लिए अच्छा है. है ना, जो आत्मा के लिए nourishing food है, वही food मुझे choose करना चाहिए. और nourishing क्या है कि जो बात आत्मा को पसंद है, वही nourishing होगा. आत्मा को क्या पसंद है? शांति चाहिए उसको, प्यार चाहिए, पवित्रता चाहिए. तो बस उसी प्रकार के थॉट्स को चूज करो, ऑटोमेटिकली आत्मा ग्रो होगी और बॉडी भी हेल्दी होने लगेगी.
0: जो अननेसेसरी हम यू नो इरिटेट होते रहते हैं दूसरों के बारे में, गलत अननेसेसरी करते रहते हैं. एक्चुअली अगर अब आप सोचना शुरू करो तो बहुत सारे थॉट्स जो हैं, जो अगर इतना मेरी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, यू नो जो हम बार बार कहते हैं वेस्ट थॉट्स, पास्ट हो गया, जो हो गया, वो हम कंटिन्यूस करते रहते हैं. अब ये प्रोसेस क्या होगा?
1: चूज करने के प्रोसेस में दो चीजें होगी. एक तो ये है कि मैं जो चूज कर रहा हूँ, कोई एक्सटर्नल चीज मुझे कंट्रोल कर रही है. पहले भी हमने डिस्कस किया है कि लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो गया है. ये जो मैं थॉट ला रहा हूँ, कोई एक्सटर्नल बात को लाके ला रहा हूँ. मेरे ही पड़ोस में एक परिवार था कि भी उनके आपस में काफी झगड़ा हुआ, डिस्टर्ब हो गए. अभी रीजन क्या था कि भी उनकी ऑफिस में दूसरा जो फ्रेंड था वो सिंगापुर छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा था, हम नहीं जा सकते. ना, वी डोंट हैव सो मच सैलरी. उसी से डिस्टरबेंस हो गया. तो वहां ये चूज करना चाहिए कि भी मैंने गलत चूज किया. ना, सिंगापुर जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पीस ऑफ माइंड इम्पोर्टेंट है. नहीं, अगर मेरे रिसोर्सेस वो अलाउ नहीं करते हैं तो बस मुझे अब इसमें चूज नहीं करना है. भी माई चॉइस इज कि भी मैं पीसफुल रहूं. भले भारत में भी कहाँ गए, थोड़ा हमने इंजॉय कर लिया और थोड़ा समय हमने इंट्रोस्पेक्शन किया, मेडिटेशन किया, थोड़ा साइलेंस में गए, तो उससे और ज़्यादा हैप्पीनेस बढ़ेगी और कोई प्रकार की बीमारियां नहीं आएगी, उसको मैं प्रिवेंट कर लूँगा.
0: तो ये एक चॉइस की जब बात आती है, अभी तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम अपनी चॉइस से कर रहे थे, थॉट्स नहीं क्रिएट कर रहे थे.
2: सी अगेन, हमें जब तक उसका डैमेज नहीं पता था, वी वर नॉट टेकिंग केयर. लेकिन अगर डैमेज पता चल रहा है कि सिर्फ एक एस्पेक्ट पे नहीं, मेरे जीवन के हर एस्पेक्ट पे डैमेज हो रहा है, डोंट यू थिंक वी विल स्टार्ट टेकिंग केयर?
0: आई थिंक वी शुड. आई एम द मोटिवेटर.
2: जी को बैठे बैठे हम सोचते रहते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये भी कोई करने की बात थी, ऐसा कर दिया, मैंने उसके लिए इतना किया था, उसने मेरे साथ. इट कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. लेट मी जस्ट टेल माई सेल्फ there's something happening.
0: I think my good my at times I'm feeling ki we should do it the other way around, you know, let's look at the disease which we have.
2: Yeah, but it's not necessary ki wo disease tak manifest ho chuka hai. Ye bhi bahut important hai ki ho sakta hai mujhe aaj diabetes, thyroid in mein se koi problem nahi hai, lekin meri thoughts chalti hain us quality ki, to kahin na kahin damage shuru ho gaya hai. Why wait? कल आपने कहा कि भाई साहब ने कहा वॉक भी वो लोग कर रहे हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी लग गई है. तो ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम हमारा बना कि बीमारी होगी तब हम ध्यान रखेंगे. ध्यान रख लें, व्हाई गो थ्रू द प्रोसेस. Why go through the process? And important तो ये है, अगर मैं अपना ध्यान रख लेता हूँ तो मुझे भी नहीं होगी और मेरे आसपास जो at least मेरी close immediate family है उनका भी ध्यान हो जाएगा. See, मैंने office में अपना ध्यान नहीं रखा तो मुझे गुस्सा आया, मुझे बीमारी हुई, मैंने बच्चों को गुस्सा किया, उसका इफेक्ट उन पर आया, मेरी वाइफ परेशान हो गई, उसका इफेक्ट उस पर आया, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट टेकिंग केयर. एंड फिर हम कह रहे हैं इन सब का ध्यान रखना मेरी जिम्मेवारी. सो इट्स सच अ विशियस साइकिल.
0: एक्चुअली काम कराने के लिए, सी जो जैसे आपने टाइप ही पर्सनालिटी भी बोली, परफेक्शनिस्ट होना अच्छा माना जाता है. सी ही इज परफेक्शनिस्ट, उनका हर चीज एक्यूरेट होती है तभी तो वो एक्यूरेट बन पाता.
2: हाँ, लेकिन उनकी हर चीज एक्यूरेट होना, अब दिस डजंट मीन कि मैं लेट बैक हो जाऊं और मैं अपना काम एक्यूरेटली नहीं करूं, लेकिन सबसे पहले क्या एक्यूरेट होना, मेरी स्टेट ऑफ माइंड. अगर आई एम अ परफेक्शनिस्ट तो मैं सबसे पहले अपने परफेक्शन की लिस्ट पर ये रखूं ऊपर कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड परफेक्ट होनी चाहिए. एक छोटा सा दाग यहाँ से वहां मुझे इरिटेट ना करते तो वो वहां मैं परफेक्शन ले आऊंगा, लेकिन यहाँ मैंने इतनी गंदगी क्रिएट कर दी, कैन आई कॉल माई सेल्फ अ परफेक्शनिस्ट. तो अगर आप परफेक्शन को अपनी क्वालिटी भी लेकर चल रहे हैं तो फिर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपनी वेलबींग को सबसे ऊपर रखेंगे ना, कि मेरी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पहले परफेक्शन हो. कुर्सी टेबल सामान काम ये तो सेकंड स्टेज पर आएगा, उसको भी अगर रख लें तो सबसे पहले आप ध्यान किसको रखेंगे. आप काम करते जाएं, बेस्ट तरह से करवाते भी जाएं, डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, दिस वी कैन टेक.
1: ये बात भी जो शिवानी बेन ने बताई ना बहुत गहरी है कि भी अचानक बीमारी नहीं होती है. आज लोग ध्यान क्यों नहीं रखते, समझते मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ कुछ नहीं है, लेकिन आप में स्लोली डैमेज हो रहा है. कहते डिजीज वो एक आइसबर्ग की तरह है, नहीं उसकी टिप ही सिर्फ हमको दिखाई देती है. या तो ये भी कह सकते हैं कि बॉडी ऑर्गन्स को नेचर ने करीब 5 गुना ज़्यादा कैपेसिटी दी है. हार्ट का ही उदाहरण ले, हार्ट में ज़रूरत से 5 गुना ज़्यादा हेल्थ है या कैपेसिटी है. जब वो हार्ट 20% पर आ जाता है तभी आपको सिम्टम्स होते हैं.
2: मतलब कितना डैमेज हमने
0: किया, पहले कितना कर दिया है हमने. बेचारा हार्ट जो ऑर्गन था वो तो काफी स्ट्रॉन्ग था.
1: इवन जो ब्लॉक्स कहते ना कोरोनरी ब्लड वेसल्स है हार्ट में, वो 60% भी अभी मेरी ब्लॉक हो सकती है शायद, लेकिन मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, मैं 4 सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ आराम से. जब वो 75-80% होगा तभी अंजाइना का पेन शुरू होगा. तो ना 70% तो टू मच है, इवन 10% भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए. तो मैं अगर इस बात को समझ लूँ और ध्यान

0: बीमारी हो गई है ना, मैंने थोड़ी सी गलती की, डाइजेशन बिगड़ गया, कुछ तकलीफ की चेस्ट में पेन हो गया, तो मैं वो करता ही नहीं,
1: इतनी दूर तक लेकर ही नहीं जाता।
0: परंतु कुदरत ने हमें 5 गुना ज्यादा कैपेसिटी दे दी है सोच के कि भी व्यक्ति स्वस्थ रह पाए तो अच्छा है,
1: लेकिन तब तक वो हमने संस्कार बना लिया उसको, अपना हैबिट बना लिया,
0: और फिर नहीं, वी टुक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो चलता है,
2: जैसे रिश्तों में हम करते हैं, जैसे रिश्तों में भी हम करते हैं ना, किसी एक व्यक्ति वो सहन करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता, हम दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, हमें लगता है ये तो कर लेंगे, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, फाइनली व्हेन दे गो यू नो मोर देन उनकी जो लिमिट थी, देन दैट विल कम आउट एज एन आउटबर्स्ट, सो मे बी आवर बॉडी ऑल्सो जस्ट देन इट्स लाइक एन आउटबर्स्ट, के बाद बहुत हो गया, इतनी कैपेसिटी थी मेरे पास, बट हम फिर उसको तब देख रहे हैं जब उसने अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाकर अपना डैमेज कर लिया है,
1: तभी वो कई बार रिपेयर के बियॉन्ड हो जाते, रिश्ते भी
2: हो ही रहे और बॉडी में भी, इसीलिए देन वी से ब्लड प्रेशर की दवाई कब तक लेनी है, सारी उम्र लेनी है,
1: हार्ट की भी सर्जरी करेंगे तभी होगा, ओपन हार्ट सर्जरी होगी तभी ब्लॉकेजेस हटाने की कोई और चीज़,
2: और जब सर्जरी कर रहे हैं तब साथ में डॉक्टर ये भी कहता है कि कुछ सालों के बाद ये ब्लॉकेज फिर भी हो सकता है, फिर भी सर्जरी करेंगे,
0: होता है ना, तो 3-3 बार सर्जरीज हुए, ऐसे कितने सारे लोग हैं। और जो एक आप बात बता रहे हैं ना हेल्थ की, उसको इमोशंस के साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, जैसे कि भी हमारे शरीर को कई न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे उदाहरण के रूप में हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम अच्छा होगा हड्डियां स्ट्रांग बनेगी, विटामिन ए अच्छा होगा आपकी आईसाइट अच्छी होगी, तो ऐसे ही ऑर्गन्स को भी, सिस्टम को स्पेसिफिक इमोशंस चाहिए
1: स्ट्रांग करने के लिए,
0: हाँ, और वो अगर आप में है, जैसे भी सिंपल सी चीज भी, हार्ट का कनेक्शन प्यार के साथ है, जिनको जीवन में अच्छा प्यार मिला है तो उनका हार्ट भी हेल्दी रहेगा, कहते हार्ट फ्लो इज इक्वल टू लव फ्लो, लव फ्लो जितना ज्यादा है हार्ट का फ्लो भी, ब्लड फ्लो ठीक होगा, ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम को सुख चाहिए, कि भी जो सचमुच जीवन में सेटिस्फेक्शन सुख का अनुभव करते हैं उनकी पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी होती है, दिमाग को ज्ञान चाहिए, जितना नॉलेज होगा, भले और नॉलेज भी साथ साथ आध्यात्मिक नॉलेज, वो जितना अच्छा होगा आपका दिमाग अच्छे से कार्य करेगा,
1: स्टिमुलेंट्स हैं उनके लिए,
0: हाँ उनके लिए कहेंगे न्यूट्रिशन है एक प्रकार का, नहीं न्यूट्रिशन डिफरेंट ऑर्गन्स को, लंग्स को पीस चाहिए, आप स्वयं भी अनुभव करना कि जब आप पीसफुल है तो सांस की गति सही होगी, डीप होगी, रेगुलर होगी, जब पीसलेस है तो सांस तेजी से चलने लगेगा,
1: तो अस्थमाटिक अगर है लोग
0: तो उनको तो जो पीस मिले ज्यादा, हाँ। तो अस्थमा पर जरूर उनका विजय होगा, उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, इसी प्रकार से जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, आंख नाक कान आदि, उन सबको पवित्रता चाहिए, कहा भी गया ना कि बेनी आंख कमल नाक कमल, ऐसे देवताओं को उसके साथ कंपैरिजन किया गया, क्योंकि कमल पवित्रता का प्रतीक है, और हड्डियां और मांसपेशियों को शक्ति चाहिए, जितनी शक्ति होगी तो हड्डियां और मांसपेशियां भी मजबूत होगी, और जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको आनंद चाहिए, आज इन एक्साइटमेंट मिल रहा है लोगों को, सच्चा आनंद नहीं मिल रहा है, अगर सच्चे आनंद का अनुभव करो तो ऑटोमेटिक आपकी सारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो सही कार्य करने लगे।
1: दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, अब इस पर काम करके हम अपनी सारी बीमारियों को एक्चुअली रिवर्स कर पाएंगे, ये तो बात रही आज जो हमने रियलाइज किया कि ये सारे दिन में हम जो जो जो जो इमोशन क्रिएट कर रहे हैं अननोइंगली ही, यू नो, लेकिन क्रिएट, आई एम सेइंग द राइट वर्ड्स नाउ, दैट वी आर क्रिएटिंग,
0: वी आर चूजिंग
1: वी आर क्रिएटिंग, सो, और दूसरी बात जो आपने कहा कि हर ऑर्गन को क्या चाहिए, उसका न्यूट्रिएंट क्या है, ताकि वो आज बीमारी नहीं भी है तो वो मजबूत रह पाएगा, उस पर और बात करेंगे, और हील अपने आप को हम अपने ही शरीर को कैसे कर पाएंगे इस पर चर्चा करेंगे, फिलहाल थैंक यू सो मच ओम शांति। आज एक और बात पता चली है, अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर हमने जितनी बातें की उसमें रिश्ते हील हुए, हम खुद इमोशनली मन से हील हो रहे थे, शरीर एक ऐसा एस्पेक्ट था जो बहुत ज़रूरी था, उसकी दर्द उसकी जो बीमारियां थी वो हमें परेशान करती थी, आज ना सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ करने के प्रोसेस में है बल्कि अपनों को अभी जो बड़े हो रहे हैं चाहे बच्चे या परिवार के बाकी सदस्य वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप उनके साथ शेयर कर पाएंगे कि कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम जान रहे हैं, स्किल्स

सीख रहे हैं लाइफ को जीने की। कोई बात मन में है, कोई सवाल है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क करें। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।